साहिब नाल अपने मालक नाल प्यार करेगा, अपने आप नू मंदा ते दूजे नू चंगा समझेगा। ऐसी अवस्था जद मन विच आ जावे ते समझो ओ ही नसा।

गुरु पातशाह ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर गुरु दी पूजा दसी है। गुरु दी पूजा किवें करनी है, इसे तरह का ख्याल भगत कबीर जी देंदे हुए सानू एक गल समझांदे ने। कहिंदे ने, हे मनुख, हे इंसान, पूजा किवें करनी है। किसे ने कह दिता तीर्थ स्नान इयो पूजा है। हुण भगत जी इस गल नूं स्पष्ट करदे हुए उपदेश साडे तक पहुंचांदे हुए कहिंदे ने, अंतर मैल जे तीर्थ नावै, अंदर तेरे मैल भरी हुई है, अंदर तेरे गुनाह कठे कीते हुए ने, अंदर तेरे अवगण ही अवगण हन। भगत जी कहिंदे ने, जे तू तीर्थ स्नान करन भी चला जाए तू तीर्थ नूं भी गंदा करके रख देवेगा, क्योंकि तेरे अंदर इतना गंद है, तेरे अंदर इतनी मैल है। भगत जी कहिंदे ने, वाकई लोगों ने अपनी मैल धो धो के तीर्थ नूं भी गंदियां कर दिता है, मैला कर दिता है। पर इत्थे हुण भगत जी कहिंदे ने, तीर्थ केड़ा है ते गुरु की पूजा की है। अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, वो बैकुंठ नूं नहीं जा सकता, ओनू कदी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता जे तीर्थ स्नान करन गया भी अपने अंदर दी उन्हें मैल नूं नहीं त्याग गया, अवगणा नूं नहीं त्याग गया, गुनाह नहीं त्याग गए। कहिंदे ने, कोई फायदा नहीं तीर्थ यात्रा जाण दा भी।

सारा दिन न रहन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा, कहे कबीर नर्त से त्यावो बावरे आ संसार। हे नर, उस मालक नु त्या, उस मालक दी पूजा कर, तू ते संसार दी तरह एवी बौरा होया है, पागल शुदाई मेंटल होया होया है, इसलिए आ उस मालक नु त्या जिस ते त्याउन दे नाल तेरी पूजा सफली हो सकती है। किदे नाल तू पूजा करनी चाहना है? इस मन नाल? शैब कहिंदे ने भी तेरा नहीं। इस तन नाल? ए भी तेरा नहीं है। इस तन नाल? ए भी तेरा नहीं है। आज इंसान नु मनुख नु हंकार ही इसे गल है, कहना तन मेरा, मन मेरा, तन मेरा, हे परमात्मा तेरा की है। ध्यान देना मेरी गल वल, हे परमात्मा तेरा की है। पर इत साहब कहते ने, हे मनुख, हे इंसान, सब कुछ तो है ही परमात्मा दा है, तू कि पूजा कर रहे हैं? तेरी पूजा किवें हो सकती है? क्योंकि सब कुछ दिता परमात्मा दा है। हुण ख्याल करना, जे मनुख नु तनना मिलदा ते मनना हुंदा, जे तन ते मनना हुंदा, तन कदी भी ना हुंदा। परमात्मा ने तन दिता है तो असी तन कमाया है, जे परमात्मा तन ही ना देंदा तन कित्थों होंदा? इसलिए साहिबां ने बाणी विच एक गल कह दित्ती सी, तन मन तन सब सौंप गुरु। भाई यह गुरु नूं दे दे, जदों यह गुरु नूं दे देवेंगा फिर हुक्म मन्नीए पाईए। जदों गुरु दे हुक्म नूं मन्नेगा फिर तू परमात्मा नूं पा सकने, फिर उहदी पूजा कर सकने, इस तो बिना पूजा नहीं हो सकती। इसलिए ख्याल बड़ा सुंदर है।

बिन गुर चरना पूजना, बिना गुरु दे चरना तो पूजा सब कूड़ सुहाओ। सारे मनोरथ सब झूठ हन, कूड़ हन।

हर की पूजा दुर्लभ है संतो, हे संत जनो हरि दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावै जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है पर कहिंदे ने इह दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर दे खान।

ख्याल बड़ा सुंदर है, हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्योंकि हरि वाहिगुरु दे नाम तो बिना सब कुछ मैला है। ए तन मैला, ए मन मैला, ए तन मैला, ए संसार मैला, इस संसार दा विहार मैला। आ तुसी देखो हर पासे मैल है, इसलिए सानू सतगुरु जी उपदेश देंदे कहंदे ने हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, तो किवें पूजा करेगा, की पूजा ली चढ़ावेगा, क्योंकि सब कुछ तो मैल है, सब कुछ मैल है, सुचा की है, क्योंकि असी वो चीज परमात्मा की दरगाह विच अर्पण करनी है जो सुचा होवे। इसलिए सब तो पहले आपा तन सुचा करने, फिर मन सुचा करने, फिर तन सुचा कीता जांदा है, फिर गुरु दे अर्पण हुंदा है। इसलिए आपां उद्यम की करने हैं, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, क्योंकि गुरु दी पूजा विच बैठना है, गुरु दा सिमरन करना है, अपने आप नू अरोग बना ले, पहले अपने आप नू सुचा कर ले, जिस तक सुचा नहीं तू हुंदा ते गुरु दे अर्पण की करेगा। हर बिन सब किच मैला है संतो, हर बिन सब

हर साचे भावे सौ पूजा होवे। बस उस मालक नू पा जाए फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह

तेरी पूजा प्रवान तां हो सकती है जे तू मालक दा पाणा अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जदों मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा परवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेंदा क्योंकि पूजा करने की एक मर्यादा है, एक नियम है, एक लॉ, एक कानून है। जब तक तू उस ला कानून दे विच नहीं आउंदा वह पूजा प्रवान नहीं हुंदी। हुण साहिब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख दी पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वाल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा है, लोगों नूं समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वह कहिंदा नहीं मैनू लोग देखण के मैं पूजा कर रहे हैं। कई लोग पगतावा ज्यादा करते ने। इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है पगतावा ना करे, सेवा लगा रहे, सेवा लगा रहे। जो तो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा। इसे तरह प्रभु की पूजा है, तू तो पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन करम वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

सेवा करे सो चक्र होए। जल थल महियल रावरे असोए बीठल बिन संसार नहीं। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख काम न हुई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखया। जात में जोत जोत में जाता बीठल बिन संसार नहीं। जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूरया। बीठल बिन संसार नहीं। तुम्हारी कृपा ते मोह मान छूटे बिन

0: पीठल बिल संसार नहीं सौ अंतर सौ बार अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत पीठल बिल संसार नहीं
1: कट कहते हिरदे उते हर कट हर हिरदे हर जगह कर कर दे हर जगह रिंद जीव तू कह नहीं सकता कि परमात्मा इस जगह है उस जगह नहीं बानी अंदर उपदेश नामदेव जी आखते ने कि परमात्मा हर जगह रिंद क्योंकि उन्होंने हर जगह परमात्मा नु वेखे जाने तके ते कह दिता है

ये सारा संसार परमात्मा तो बिना नहीं। जले हरी हले हरी बीठल बिन संसार नहीं, जले हरी थले हरी उरे हरी, बने हरी बीठल बिन संसार नहीं। कोई भी ऐसी जगह नहीं जिथे परमात्मा नहीं रही। इंसान ए ते तू ही कह कि परमात्मा सिर्फ गुरुद्वारे ही रहिंदा है, होर किते नहीं। कि तेरे घर विच परमात्मा नहीं, उत्थे भी है। ए ते असी आप ही परमात्मा नूं बाहर कर दिता है। परमात्मा ते हर जगह रहिंदा है, तेरे हिरदे विच भी परमात्मा है, पर जाने या नहीं। इस स्थान ते असी आउने अपने आप नूं बड़ा पवित्र कर, कहने हैं कि गुरुद्वारे चले हैं पवित्र होके जाइए, क्योंकि वो बड़ी पवित्र जगह है। ते पवित्र जगह बह के मन लगता है। इंसान इस जगह नूं जे पवित्र समझना है कि अपना घर तो पवित्र नहीं बना सकता। जे अपने घर नूं तो पवित्र बना लवे तो उत्थे भी हरी रहिंदा है, उत्थे भी परमात्मा दे निवास है। कि उत्थे परमात्मा नहीं रहिंदा, उत्थे भी परमात्मा है। मैनूं इक गल याद आ गई, किसी ग्रह विखे दस गया बचन होंदे आ, गल अगा वधी। एक माता जी कहन लगे कि साडे घर एक महापुरुष सन, खुशी विच आए, आ के उन्हां मैनू दो गिलास फड़ा दिते। गिलास मेरे हथ विच आए ते मैं पुछ कीती, महापुरशो इन्हां गिलासां नूं मैं की करां? ते उन्हां महापुरशां कहा, बीबी ए मैं तेनू गिलास दिता है, ये गिलास हुण तेरे पास आ गए ने, ये हुण तेरी मर्जी, इन्हां दे विच तू मिठा पा, तू कौड़ी वस्तु पा, ये तेरी मर्जी। भाव कि ओ परमात्मा दा

तू जानिया ही नहीं जान क्योंकि इंसान बाहर वेखदा अंदर नहीं चाती मारदा जो तो अंदर चाती मारेगा गल उदो ही बनेगी हे इंसान जे गुरुद्वारे नू पवित्र करके समझना है अपने घर नू भी पवित्र बना ले ओनू भी पवित्र करके जान लै परमात्मा उथे भी तेनू प्राप्त हो जाएगा सानू बाणी अंदर उपदेश मिलता है आओ अरदास करिए कि पातशाह करो कृपा सानू इस बाणी च चलण दा बल उद्दम बख्शो भाई साहब ने आख दिता है घर घर अंदर धर्मशाल गुरसिख का घर जेड़ा ना धर्मशाल है घर नहीं पर असी धर्मशाल केवल गुरुद्वारे नहीं समझ छड़े आओ घर भी धर्मशाल बना ली जदों घर धर्मशाल बन गया फिर उ गल पक्की हो जाएगी ई बै बीठल ऊ बै बीठल बीठल बिन संसार नहीं कोई भी जगह परमात्मा तो बिना नहीं है हर जगह परमात्मा रहिंदा है इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं उहां तो जाइए जो इहां ना होए उथे पिता जाइए ना जिथे परमात्मा नहीं जे परमात्मा घर बैठिया मिल जाए तो बाहर जाने की जरूरत है फरीदा जंगल जंगल क्या भावे वन कंडा मोड़े बसे रब हयालिया जंगल क्या ढूंढे इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं ते साहिब श्री गुरु नानक पातशाह का मिशन सी जीव बार ना जा कर बैठे हैं परमात्मा तेन मिल सकता कर बैठे हैं प्रभु नु तू पा सकना जोगियां ने कंदरा मलिया कन परवा लै बबूतियां मल लिया कफनिया पा लिया पर फिर भी मंग रहे चुटका आटे का दे जोगी आए ने लंगर बना ते साहब कहन लगे होए अतीत ग्रिस्त तज फिर उन्हों के घर मंगण जाई अतीत हो गए ग्रिस्त नू त्याग दिता जे फिर उन्होंने घर विच मंगण क्यों जाते हो तुसी ते सब कुछ छड़ दिता है जंगलां भी चले गए हो योग अख्तियार कर लिया जी कहिंदे हो कि जंगल दे विच रब रहिंदा है ते रब नू उत्थे जाके पाओ फिर ग्रिस्तियां दे घर विच आके मंगदे हो ते साहिब श्री गुरु नानक पातशाह ने आखिया ना जीव बाहर ना जा घर ही बै दसम पिता ने भी लिखे है रे मन ऐसो कर सियासा बरसे सदन सबे कर समझो मन ही माए उदासा उदास रहना है अपने मन अंदर इत उदास रह के तू परम पुरख की प्राप्ति कर सकना है बानी ते सानू बारंग बार उपदेश लेंदी साडा मन यह समझदा ही नहीं जानदा ही नहीं असी अरदास करनी कि सतगुर कृपा कर मेहर कर ए बाणी साडे हिरदे अंदर भी वसे इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं चल चल महियल रिहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे परमात्मा ते साडे कोल है परमात्मा कदों साथों दूरे ओ ते साडे नेड़े वे असी दूर कीता है

भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भक्त रविदास जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देने वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत दे किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। यह सवाल उठाया है किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा किस टेक्निक दे द्वारा किस विधि दे द्वारा किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है उपाय है, किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिसके द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

के देहन में परम गति पा ली। सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भगत रविदास जी दस देहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिए नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी च आखते हैं कि जो साधुओं का संग है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आ गया। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन ए जिहड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारियां विधियां जड़ियां हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी प्रफाउंडनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जो भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे, देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। इसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंग जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी के शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उसका कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहों च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहिंदे ओ सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहिंदे मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सिते, डिले नहीं कीते। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसनों सुनो फिर उसका असी अर्थ करांगे।

ये पावन शब्द पावन राग साडे सत्कार योग प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अमर सिंह जी भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी जो भाई साहब भाई दया सिंह जी पटना साहब वाल दे प्राता साहब ने वो भी गुरु की हजूरी विच सुशोभित ने साडे हंसलो तो आए दलजीत सिंह जी वैनकूवर तो वीर जी आए ने तो बड़ा दर्शनदार संगत दे होए ने तो संगत वालों हुक्म आया सी कि राग 10 मिनट जरा ज्यादा लाने ने तो ये सोरठ राग दे विच आप जी ने शब्द श्रवण किया है तो आओ दो तीन रीतां जरूर गायन करनिया सन पर संगत वालों हुक्म है कि एक दो रागां दी बंदिशां जरूर श्रवण करवाउणियां हन आओ इस तों पहला एक रीत फिर गायन करांगे पहला आओ एक नौ मात्र दी बंदिश है आप जी दे सन्मुख बहुत ही सुंदर है पुरातन चीज है और बड़े प्यार नाल श्रवण करो।

नाम तेरो आसनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आसनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु जिहदे नाल केस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते ने नाम तेरो केसरो लै छिड़कारे, कहते ने वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का करते ने ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे है। अगे भगत जी कमाल की गल कहते हैं।